0: serta Bijapan Bu.
1: Didi, asa berdengar semangat kita kok. Cita berpun anginnya ikli bersama jangunca. Di bantu pun jangan bahasa. Oleh kuk panjangnya, ayo kita beri anginnya. Nah, pula tu tisu macam ni, kira siapa? Duka gara-gara kena kepesan bina alami jangan gadai tu. Asli kalau kau lagi kesan, mungkin kau perlu berani tanya kau pesan siapa. Sama-sama kurangnya kisah mati gara-gara macam, korbari begini justru perlu siapa? Nona juga sambil dengan kau. Nah, itu lagu supaya kau tanya bosan justru laksa siapa? Kau pesan lagu supaya. Bani, kira apa tu nilai? Mereka hati bana tu?
2: Kau ini, kira mana? Saya cakap ganja khalaik jebat jisti lari. Mereka pun ini bani ni sakit na. Rakhani, tiap pasal bistari bani mana bani? Orang itu lari lagi sa, cakap ni sakit na. Orang itu gara bani aku sa.
1: Gara, sahur malam kiri thasi na. Kau tu kurukku isap tu shalun dosa. Kini tak hamil saharu. Kau isap tu bawa dulu tangan kau bici. Sanjita. हमें आमा बुलाने समाज से बनाने बोल दीजिए प्रतिष्ठा सुप्ते सा इसको संरक्षण तीनों तरह हो
2: मुझे दीदी धन्यवाद अब मैं सभी शारीरिक एक असल नागरिक बनने प्रयास करने से मेरे सेवा के लिए तुम्हें धीरे ही दुख दिए किसी मेरे सभी ठीक परिवार मैं माफ करूं मैं सुधरने में कामयाब हूं
1: बारिश का मौसम सुबह दागरी दोनों से तिलावरी बस्ती और पदार्थ नागु पदार्थ वाला नागु सत्रु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नागु पदार्थ नहीं स्वस्थ शरीर के लिए कोई गर्भ आवश्यक दवाई को पदार्थ में परिभाषित करेगा सा ये सब पदार्थ में बारिश को चौबीस स्थानीय पदार्थ का प्रभाव पाने का साधन उसको भावना उसको सर्दा पूरी बता दिया सा इसलिए नागु सत्रु प्रमुख उसका प्रसार मुख्य रोगी प्रभाव जो दो स्वस्थ जीवन कृषि सदस्य दुर्भाग्य हाथी वालों को लागू असर दुकान समाज दुर्भाग्य कलाजी तीनों प्रशासन कार्यालय से लुकाबे या सिलु ऐसी कुछ सभी तपुर्यास में जरूरत में जरूर संगोस आज तो तीनी देरे मालूम थकी दिखी जाए क्यों बाई उसके आज फिर गाली मारे पैसा पनी दियो ना मोबाइल पनी खोसे ओहो दीदी कुत्ते मात्रे हिंसा हुई ना, गाली गाली, डॉल दिखाऊं मैं, पैसा नियंत्रण गाली, ये सब घरेलू हिंसा हुई। बुरा, मुझे तो सोच के थे ना, ये तो घर भीतर का सामान में पूरा होना नहीं रहा।
3: आई ना नहीं, घरेलू हिंसा बानी को घर भीतर व नजीक का सामान लगा होने कुने पनी प्रकार को दुर्व्यवहार हो, इसमें शा� यो हिंसा सबै पर्छन् मोबाइल नियन्त्रण गर्नु आवत जावत रोक्नु पनि निजी कुरा होइन नि घरेलु हिंसा हो अपराध हो
1: त्यसो भए अब म चुप बस्दिन सहायता खोज्छु
4: घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन 2066 ले हिंसा गर्नेलाई जरिवाना र कोही दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ हिंसा गर्नेले 3000 देखि 25000 सम्म जरिवाना वा 6 महिना सम्म कैद भोग्नु पर्छ दुर्व्यवहार दोहोरिएमा सजाय दोब्बर हुन्छ
5: हिंसा सहनु पनि अपराध हो हिंसा भएको छ भने नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुहोस् उजुरी गर्दा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिन्छ
4: नेपाल सरकार
1: खै जन्मदाता दिनुस् त
2: जन्मदाता गरेको छैन नि म्याडम
1: बाउ जन्मदाता नभए त विद्यालय भर्न हुँदैन नि
2: मलाई त थाहा नै थिएन
1: बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र र रहदानी बनाउन बैंकमा खाता खोल्न अनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधा पाउन जन्मदाता अनिवार्य हुन्छ
6: त्यति मात्रै हो र दाई जन्मेको 35 दिनभित्र स्थायी ठेगाना वा जन्मेको ठाउँको वडा कार्यालयमा जन्म दर्ता गराउनु पर्छ
7: जन्म र मृत्युदाता परिवारको मुख्य व्यक्ति वा 18 वर्ष उमेर पुगेका घरको सदस्यले वडा कार्यालयमा गराउनु पर्छ
1: विवाहको सूचना पति र पत्नी दुवैजनाले दिनुपर्छ सम्बन्ध विच्छेदको सूचना अदालतको निर्णय सहित पति वा पत्नीले दिन सक्छन्
7: जन्म मृत्यु बसाई सराई विवाह एवं सम्बन्ध विच्छेद का घटना दुलैमा दर्ता गर्न नागरिक को कर्तव्य हो।
6: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: उगांडा मैराथन को नीति परिवर्तन संबंधी सूचना
1: गत 2026 अगस्त 20 में आयोग विनाशकारी बाजी पोहरो ठूलो जंगल को क्षति प्रति हमी गहरो सकारात्मक छो सही राष्ट्रीय विपत्ति को हुजीला गंभीरतापूर्वक ध्यान दी उक्त मैराथन को नीति सारी हो इस कठिन परिस्थिति में हम कार्यक्रम प्रति दिखाने भाई अतीत सहयोग विश्वास को हमी संपूर्ण सहभागी प्रायोजक स्थानीय समुदाय तथा आम दर्शक हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। नया नीति में इस मैराथन भव्य र सफलतापूर्वक संपन्न गर्न हामीलाई थप सहयोग सल्लाह तथा शुभकामना प्रदान गरिदिनु होला भने हार्दिक आग्रह गर्दछु। रेड पांडा नेटवर्क संघको सहकारीमा यस आयोजक समितिले आगामी 2026 सेप्टेम्बर 5 में आयोजना गर्ने भनेको रेड पांडा मैराथन को नीति परिवर्तन गरी 2026 नोभेम्बर 28 में आयोजना गर्ने निर्णय गरेको विवरण सम्बन्धी सबैमा जानकारी गराइन्छ।
0: अध्यक्ष निमा टेन्डु शेर्पा हिमाली स्वास्थ्य र वातावरण सुभाष तुलुकुन्दु।

0: Noche. Solo FM, Studio Time.
1: डिजिटल कलर ल्याब तथा ध्वलामय अफसेट प्रेस सोलु दुपुन्न नगरपालिका पाँच सोलुखुम्बु।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोनिया फैन स्टूडियो टाइम
2: इट्स 2 PM न्यू सपोर्ट बी वजह
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा
3: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ

कल कल कल कल बगछु खोली को चाल दस्तो कहले बगछु बेगुमारी नारायणी को छाल दस्तो कहले कल कल कल कल बगछु खोली को चाल दस्तो कहले बगछु बेगुमारी नारायणी को छाल

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: Sound check. Studio time. Studio time.
2: It's 3 PM. Beautiful 3 PM.
3: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू
2: कंप्लीट पाइपिंग सॉल्यूशंस

0: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
1: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
0: सुनो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Sound check. Solo FM. Studio time.
4: It's 7 p.m. Start call 7 budget.
5: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुकुन नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू